विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से

कितना सुंदर संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सेवा, ये सब ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य

राजा का पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी। मानवता की सेवा, उसके दर्द, दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः सामाजिक सहभागितायाः सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादकमुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26th

प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसला

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी अगर मुस्कुराते हुए जी जाए तो हर सफर आसान हो जाता है। तो चलते चलते बहुत ही खूबसूरत गीत जो प्रेम और उम्मीद से भरा हुआ है उसके साथ छोड़े जाता है आपको। इस गीतों भरे गुड मॉर्निंग में आपका ये दोस्त नवीन सक्सेना। एंजॉय कीजिए और अपने दिन को

0: संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग

0: लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा

धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान

0: रहे। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की

आने बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरान तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 3,79,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत

0: का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30,17,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरा अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल की अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जीआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तक

0: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हसब मामूल आमदरफ्त उनकी आसानी और तहफ्फुज के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकामात पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, CCTV नेटवर्क्स और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदत मंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।

0: किलोमीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संतूर पर बजाया राग तोड़ी। कलाकार हैं मनोज कुमार शर्मा। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर रंजीव कुमार बिस्वास। तो आइए सुनते हैं मनोज कुमार शर्मा से संतूर पर बजाया राग तोड़ी।

0: वो मैक्सिमम तरीके से कर सके। शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है, वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू ये है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फोमेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से। अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है।
1: जी
0: तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा, उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेस की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते
1: तो
0: हैं।
1: एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?

0: बनना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
1: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती हैं, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी

0: सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा
1: सोशल
0: है?
1: मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया एक डबल एजेड सोर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है,
0: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं
1: अर्श से फर्श पे आ सकते हैं, पर एट द
0: जी।
1: सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
0: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
1: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे

0: सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसी ने कहा है कि जिथे सबर दृढ़ता ते सख्त मेहनत एक हो जावे उथे जित पक्की हो जांदी है। आओ जानदे हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे पुस्तक पड़चोल लड़ी हेठ डॉक्टर गुरजीत कौर तो पुस्तक समीक्षा। इस तो बाद लोक गीत भी सुनवाए जाणगे, पर सब तो पहला अज दे दिन विशेष बारे कुछ गल्लां कर लैने आ। 30 जुलाई नूं हर साल विश्व मनुखी तस्करी विरोधी दिवस मनाया जांदा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 विच इस दिवस नूं रस्मी तौर ते मनाउण दा ऐलान कीता सी। इह दिन लोकां नूं चेते कराउंदा है कि मनुखी तस्करी एक गंभीर अपराध ते मनुखी अधिकारां दी उलंघना है। इस विच लोकां नूं धोखे नाल फसा के जिनसी शोषण, जबरदस्ती मजदूरी, अंगां दी तस्करी जां होर रूपां विच वरत्या जांदा है। दुनिया भर विच लखां लोक, खास करके औरतां ते बच्चे, गरीब तबके दे व्यक्ति इस बुराई दा शिकार हुंदे ने। इह अपराध संगठित तरीके नाल हुंदा है ते अक्सर गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध ते जलवायु तब्दीली वर्गी समस्यावां इस नूं वधाउंदियां ने। इस साल 2026 दा थीम है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यानी कि धोखाधड़ी दे जालां विच

अते वेदांतक सच प्रगट करता है कि मनुख कोई हड मास का पुतला मात्र नहीं, बल्कि एक उच्ची अवस्था का नाँ है, जिथे एक बूंद भी समुंदर वांग समाई हुई है अते एक छोटे जिहे छिण विच ही पूरा महाकाल बंद है। इत्थे नष्ट होण दा तांडव ही असल विच नवी सिरजण दा आधार बनता है अते चुप अपने आप विच एक महान संगीत बन के गूंजदी है। राजीव सेठ दी ये विलक्षणता है कि वह पाठक नूं सिर्फ बाहरी दुनिया के यथार्थ नाल ही नहीं जोड़दे, सगों वह सानू कला, कविता, चित्रकारी अते सफर दे बहाने जीवन दे सब तो वड्डे रहस्य यानी अपनी होंद नूं पछाणन

बाजरे दा सिट्टा नी असी तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया नी असी गली विच्चों मोड़िया। सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हाँ अगला गीत चंद्रकांता कपूर दी आवाज़ विच।

छपितियां चुनिया ने कोरी मोड़े टंगिया माही दूरों हसता चे जुल्फां ने नंगिया सूफ दिया सुथना ने तेड़ सप रंगिया चिट्टा चक्का ते वास कटक

जाम दी जवानी न संभाली ते चोए मुंह तो नाली ओए कंठे वाला तार कटदा ओए कंठे वाला

कैंठे वाला धार कढ़दा दुध रिड़के झांजरां वाली। उषा सेठ की आवाज विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी, ते आओ जांदे जांदे सुनदे हां अजीत कौर की आवाज विच ए लोक गीत।

दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में

महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश

0: बदलाव हो
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और ये देखिए, बहुत सारे हमारे पास संदेश आ चुके हैं। जो सबसे पहला संदेश हम जो ले रहे हैं वो है सतीश अनेजा जी का, और ये कह रहे हैं, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है आपका। और सबसे पहले लिख रहे हैं कि सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, आनंदित हो और सावन के गीत सुनवा दीजिए। क्या बात है। देखिए सतीश जी, हमने आपके कहने से पहले ही

लेने में और मज़ा आता है। और सावन के महीने में पतंगबाजी का क्रेज़ लोगों में बहुत जोश भर लेता है। आज भी सावन में पतंगबाजी के इस पुराने और रोमांचक शौक़ का आनंद लेते हैं। जी क्या बात है, देखिए यही तो होता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी बातें हमारे साथ साझा करते हैं, तो हमें नई नई जानकारी भी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आप अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी संदेश लेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यार भरा प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। और देखिए, बहुत सारे और भी संदेश हमें मिले हैं और ये बहुत ही प्यारी पंक्तियों के साथ ही हमें संदेश भेजा है सतप्रकाश सोनोठिया ने। रोहिणी से आप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, नब से बरसे अमृत की धार, झूम उठी धरती महका संसार, अमावट की रिमझिम झड़ी है भारी, भीग रही सावन में सखियां सारी। क्या बात है, बहुत ही प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। और आप जब इस तरह से हमें संदेश भेजते हैं, बार बार कहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला जो संदेश है ये है हमारे पास, ये जो संदेश भेज रहे हैं ये लिख रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं हमें, और दिला

ये एक और हम संदेश ले लेते हैं कि अभी तक आपने नो रिस्पांस दिया है, और सावन में हमें घेवर खाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तुलसी मुस्किन और वीना मुस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना जी और शाहदरा से दिल्ली से, आप लोग जो ये लिख रहे हैं संदेश, हमने आपका संदेश पहले भी लिया है, और जी हाँ फिर से आपका हमने संदेश ले लिया है, और घेवर तो अच्छा लगता ही है, थैंक यू उसके लिए। और इसके अलावा कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद और शाह जहाँ बेगम और जैनब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, समय अब धीरे धीरे अपना समाप्त हो रहा है, अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है, तो चलते चलते आपको छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ, और इस कार्यक्रम को मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए जाने की। फिर से मिलूँगी एक और प्यारे से कार्यक्रम के साथ और नए नए गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं ये अगला गीत। नमस्कार।

0: करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में आज शुभम सरकार ने वायलिन वादन की प्रस्तुति दी। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर प्रदीप कुमार सरकार, तानपुरे पर शिवम नायक। इस कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से लिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया प्रकाश थपलियाल, मनीष आनंद और सुनील कुमार ने। हमारे सभी साथियों के लिए करतल ध्वनि। प्रस्तुति सहयोग था विशाल, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे।

0: का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में

संस्कृतियों और समुदायों के बीच मित्रता, आपसी सम्मान और शांति को बढ़ावा देना है। इस दिन का संदेश केवल व्यक्तिगत दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन वैश्विक भाईचारे और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज इस अवसर पर हम अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें और प्रेम, विश्वास और सद्भाव के इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लें।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। श्रोताओं, ये अभियान हमें संदेश देता है कि जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो वर्षा जल को संचित करें। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का जो संग्रह है वो बढ़ाना है और साथ ही साथ भूजल स्तर को सुधारना भी है। ये अभियान तालाब, कुएं, झील और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है और उनको पुनः जीवित करने की भी बात करता है।

गुड्डी। अभी इस फिल्म में आपने ये गीत का जो गीत सुना और आवाज़ थी वाणी जयराम की। और श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की, जो मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी या गिरवी के पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ऋण और ब्याज पर छूट प्रदान करती है। श्रोताओं, योजना की मुख्य विशेषता ये है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी गाइड। और अब बात हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई। श्रोताओं, महिलाएं घर परिवार की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। ऐसे में महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, कि बाहर का काम है, घर का काम है, सुबह भाग भाग कर काम करना। तो जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, और ऐसे में जब जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा हो, भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान रखेंगी तो वो परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी, और ये उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे उन पोषक तत्वों की, जिनकी पर्याप्त मात्रा महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन यानी लोह तत्व की। अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयरन से भरपूर भोजन ज़रूर लें, और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह

सम्मान उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कम उम्र में किसी क्षेत्र में खास उपलब्धि हासिल की हो। बहादुरी, खेल, विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें बच्चा अगर कुछ खास करता है तो उसके कार्य को, उसकी उपलब्धि को एक नई पहचान दी जाती है। आपको ये भी बता दें कि जो ये पुरस्कार है वो 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाता है और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान भी इसमें रखा जाता है कि बच्चा जो है वो भारतीय नागरिक हो और भारत का ही निवासी हो। पहले इस पुरस्कार को का उसने प्राप्तकर्ता ना हो, यानी कि उसको ये पुरस्कार पहले ना मिला हुआ हो और कोई भी उपलब्धि या कार्य अगर उसने कुछ किया है तो जो वो नामांकन है कि अंतिम तिथि से पिछले 2 वर्षों के भीतर का होना चाहिए। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस पुरस्कार का आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और इस वर्ष नामांकन की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2026 यानी कि कल तक है। तो अगर आपका बच्चा या आपके आसपास किसी ऐसे कोई बच्चा है जिसने कोई बहुत ही अच्छा काम करा और आपको लगता है कि वो भी इस पुरस्कार का हकदार हो सकता है तो आपके पास आज का और कल का समय है, आप उसको वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं।

इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं और आप भी मानते ही होंगे। क्यों तो क्यों ना आज बात करें एक ऐसी कला की जो मालवा क्षेत्र से संबंधित है, मटकी नृत्य। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है ये मटकी नृत्य, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और उत्सवों के दौरान सिर पर मिट्टी का छोटा सा घड़ा संतुलित करके किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत एक महिला सिर पर मटकी

0: को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण

श्रोताओं, दिन के 1:10 हो रहे हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है, पर इस खामोशी के पीछे छिपे हैं एक ऐसे राज जिसने 2004 में पूरे देश के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने बोल्डनेस, सस्पेंस और म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी थी। भटकैंप की आइकॉनिक फिल्म, जी हां, मर्डर। एक अधूरी शादी, एक पुराना प्यार और एक गलत कदम जो ले जाता है एक ऐसे मोड़ पर।

जब दिल के अंदर ना प्यार हो और दिल अंदर से खाली हो तो गुमराह होना आसान हो जाता है। एक दिन बारिश के बीच सिमरन की मुलाकात होती है अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी से। सनी बेपरवाह, जुनूनी और सिमरन की तन्हाई को वो भांप लेता है। सनी की आंखें और उसकी बातें सिमरन को उस अतीत में खींच ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जुनून था। बारिश की बूंदों के बीच जब ये दोनों करीब आते हैं तो बॉलीवुड को मिलता है एक सबसे रोमांटिक और प्यारा गाना, जिसे गाया था कुणाल गांजावाला ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं जिसने कुणाल को स्टार बना दिया था।

इस कार्यक्रम को जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को तहे दिल से सुनते हैं, और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: आते हमेशा सारे मामले ते चर्चा करने लिए तैयार रहिए।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: श्री नड्डा ने सभा नु सूचित किया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर बाद 2 बजे जनतक परीक्षावां अनुचित साधना दी रोकथाम शोध बिल 2026 पेश करेंगे। श्री नड्डा ने सभा विच रुकावट पाउण लई विरोधी धिर दे विहार अति भूमिका दी निखेधी की थी। इस तो बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ते तृणमूल कांग्रेस समेत विरोधी पार्टी

राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी, जिसका मकसद पेपर लीक के कसूरवारों के लिए सख्त कानून बनाना है। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान RAF की जानिब से इस्तेमाल गोली बारूद की तफसीलात को महफूज रखने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग जारी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और कनाडा में मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए आज राज्यसभा में

0: मोशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 एज पास्ड बाय द लोकसभा टुडे इन राज्यसभा बाय ग्रांट ऑफ वाइवर अंडर रूल 123 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा अकॉर्डिंगली ए सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर टुडे हैज बीन इश्यूड फॉर टेकिंग अप दिस बिल फॉर कंसिडरेशन पासिंग।
1: इस बिल में कसूरवार

तेजी से निपटाए जाने के लिए इस बिल में ये कहा गया है कि रियासती सरकारों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेंगी। इस बिल में यह भी कहा गया है कि मामलात की छानबीन थाने में इतला रिकॉर्ड कराए जाने की तारीख से 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल की जानी चाहिए और मुकदमे की कार्रवाई फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई नीट इम्तिहान मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोरगुल के पेश नज़र दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौरते मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में

0: जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित को सोने का तमगा देने और जीतने और मोहम्मद बासिल को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। बाद में जब स्पीकर ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करना पार्लियामानी रिवायात के मुताबिक नहीं है।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।
0: शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दो वक्त मेटेलिक पैलेट गन पर मुकम्मल पाबंदी की गुजारिश की गई है। उसने पुलिस तहकीक व तरक्की के ब्यूरो की एडवाइजरी का हवाला दिया और कहा कि पुलिस को गैर मामूली सूरत हाल में पैलेट गन इस्तेमाल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला माल्याबागची और वी मोहना पर मुश्तमिल एक बेंच ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज के दौरान पैलेट से जख्मी हुए अफराद को इलाज व मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जानिब से 2020 के फसादात के एक मामले को मंसूख किए जाने के ख़िलाफ़ चंडीगढ़ की इंतजामिया की एक अर्जी पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और आपके दीगर रहनुमाओं से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमालिया बागची और जस्टिस वी मोहना की एक बेंच ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीठेयर, बलजिंदर सिंह कौर, अमन अरोड़ा और दूसरों को नोटिस जारी किए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बताया कि ये गैरकानूनी तौर

3% वोटिंग दर्ज की गई है। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी की सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल सेलिंग टीम से बातचीत की और उनकी गैरमामूली कामयाबी और पुख्ता आज़म की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि सेलिंग उनकी कामयाब मुहिम मुल्क के लिए इंतहाई बाइस फख्र है। शरवन महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध

0: रूप नहीं है।
1: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ

0: दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे।

0: आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
1: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।

0: साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हो रहा है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

खूबसूरत है। इस गाने के साथ हम चलते हैं इस फिल्मी दुनिया में अपने एक ही कलाकार के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी दोस्त रैना, और जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ आधे घंटे के लिए। और जल्दी से मैसेज कीजिए ipradiodelhi@gmail.com। आज हम किस की बात कर रहे हैं, कौन है जो अपनी आवाज़ से हमारे दिलों पे छा चुके हैं।

बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। फारूक अली खान जी का हमें मैसेज सबसे पहले आया, लेकिन जवाब जो सबसे पहले दिया वो हमने बता दिया। फिर हमारे पास आया निसार अली जी का जवाब। भूषण खेरा जी ने हमें मैसेज किया पंजाब खेड़ा से, और पवेरा भूषण खेरा, विष्णु खेड़ा, बहुत सारे मैसेज हमारे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद जी का, तनुज जी का, नीतीश, इताशांत, लखन, सावित्री। अब चलते हैं, सुनते हैं गीत।

जी हाँ, हमारे पास मैसेज आए हैं नितेश जी का और दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना, कृष्णा देवांगन, यासीन अंजान जी का, या साइमा हसन बाबू।

जी हाँ दोस्तों, कई बार किसी गायक की आवाज़ अभिनेता की पहचान बन जाती है। सोनू निगम की आवाज़ भी कई सुपरस्टार पर इतनी खूबसूरती से जमी रहती थी कि दर्शकों को इतनी पसंद आती थी कि क्या बताएं। क्या आपको पता है कि एक गाना गाते हुए सिंगर के मुंह से, यानी कि इन्हीं के मुंह से खून निकल आया था? जी हाँ, वो गाना है फिल्म परदेस का, ये दिल दीवाना, जो शाहरुख खान पर फिल्माया गया। हुआ ये कि जब सिंगर गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो पहुंचे तो सुभाष घई ने उनसे कहा कि सोनू, ये गाना ना तुम्हें इतने दर्द के साथ गाना है कि तुम्हारे गले से खून निकलना चाहिए। सोनू निगम ने सुभाष घई की इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि उन्होंने इस गाने को ना बेहतरीन बनाने के लिए अपनी सारी जान लगा दी। हैरानी की बात यह है कि गाने की रिकॉर्डिंग खत्म की ही कि सच में ही उनके गले से खून निकल आया, जो उन्होंने सुभाष घई को दिखाया भी था। इसका खुलासा खुद सुभाष घई साहब ने एक सिंगिंग रियलिटी शो के स्टेज पर किया।

साहब जी की, और उनके बारे में हम क्या बताएं, कई भाषाओं में महारत उन्होंने हासिल की। सोनू निगम जी ने हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, नेपाली और अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी सभी भाषाओं में, यहाँ 30 से भी अधिक भाषाओं में 6,000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए गए। और कहते हैं कि सोनू निगम हर रिकॉर्डिंग से पहले घंटों रियाज करते थे। उनका मानना है कि कलाकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है, बिल्कुल सही। और सोनू निगम जी के स्टूडियो के बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि एक लाइव कॉन्सर्ट भी वो बहुत अच्छे से करते हैं, और उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। जी हाँ, उनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। भाई, आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो क्यों ना मिले। और इसी तरह से दोस्तों कहते हैं कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी ना, सीमा पर जो तैनात हर जवान, इनकी आवाज़ से ये नगमा सुनते हैं, आप भी सुनेंगे तो बिल्कुल डूब जाएंगे जिस तरह से मैं डूबी। देशभक्ति जज्बा वो अपने हर आवाज़ के हर लफ्ज़ में उनके झलकता है, और ये गीत अमर बन जाता है।

नागरिक बने, सबकी मदद करें, जब कर सकें तो ज़रूर करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और सुनते रहें आपके आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त।

सांस के लहज पर। और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी का। तो आइए एक राग, ये कार्यक्रम सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आदाब, सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और होस्ट रहना तवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर आ गई आपके साथ आपके ही अगले कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी में। जी हाँ श्रोताओं, अब हम लेकर चलेंगे 1950 और 60 के दशक के उस गोल्डन एरा में जहाँ प्यार की बातें शोर नहीं करती थी बल्कि सुरों में बहती थी, गीतों में मासूमियत, शब्दों में कविता हुआ करती थी। और धुनों की बात करें तो धुनें जो होती ना दिल की धड़कनों में बसती थी। प्यार का इजहार आँखों में आँखों से ही हो जाता था, कोई कुछ कहता नहीं था, बस आँखों से बयां हो जाता था। और वो शब्द ऐसे थे कि आप कहते थे और दूसरा समझ जाता था। तो इस आधे घंटे में उस फिल्मी गलियारों को हम महसूस करेंगे जो सदाबहार गीतों का दशक कहलाता।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल हम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

गीत होते हैं तो मज़ा आ जाता है ना, और महसूस हो जाता है कि अरे क्या बात है, बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है, और जब हम ये गीत सुनते हैं तो और मज़ा आ जाता है। तो चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी और मैं हूँ आज आपके साथ रैना तंवर। तो कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? हमें उम्मीद है बहुत सारे मैसेज आए हैं, सभी को कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात कर रहे हैं जो आपने अभी सुना, बहुत ही प्यारा नगमा सुना है ना, और अगले हम इसी कार्यक्रम में हम सुनाने जा रहे हैं अगला ये जो गीत है

जी हाँ, आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडी और हम लेकर आए हैं आपके लिए खूबसूरत से नगमे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है मेरे जाने का, यानी कि इस कार्यक्रम से अलविदा लेने का। हमने 50 से 60 के दशक के वह फिल्मों के दौर ही नहीं थे बल्कि संगीत का स्वर्णिम अध्याय था। इन गीतों में प्रेम, अपनापन, जज्बात और एक ऐसी मिठास थी जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। क्यों, सही कहा ना? तो जाते जाते एक गीत तो सुनना बनता है।

जिंदगी को कामयाबियों से हमकनार करवाती है। खुद एतमादी रखने वाला शख्स अपनी खूबियों और सलाहियतों पर यकीन रखता है और मेहनत तो लगन से हर मुश्किल को हल करने की कोशिश करता है और बिलाखिर अपने मकसद को पा लेता है। रुदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। रुदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। दो दिन की मसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। आइए सामीन, आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है सागर सिद्दीकी का।

कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। आइए सामेईन, मीरा बासु की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मिर्ज़ा गालिब का।

सामिन, अभी आप अनूप जलोटा की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था नज़र बारा बंकवी का। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशार गज़ल।

0: इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
1: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज ये विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा कल ही इसे पारित कर चुकी है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में

ये 27 अप्रैल 2026 को गांव खो मानेसर गुरुग्राम से लापता है। और अंत में गुमशुदा व्यक्ति का नाम है शिवानी पुत्री मालती देवी। ये लड़की हैं जिनकी उम्र है 16 साल, रंग साफ, चेहरा गोल, शरीर हल्का है, कद है 5 फुट 2 इंच। ये 1 अप्रैल 2026 को गांव

0: बनाया हुआ एक यादगार पल सोचिएगा जरूर और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ भी उठाइएगा।
1: चलिए दोस्तों, इसी सावन की रिमझिम खुशियों के साथ सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का गीत नमो नमो।

0: सलाह देना चाहूंगी। कल ही सोशल मीडिया पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था साइबर स्लेवरी नेटवर्क के ऊपर।
1: अच्छा, वो क्या है?
0: तो दरअसल सुहानी, आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया और बेहद खतरनाक रूप सामने आया है जिसे साइबर स्लेवरी कहते हैं। हमारे जैसे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स और जॉब सीकर्स को विदेश में शानदार नौकरी, अच्छी सैलरी, फ्री वीज़ा, रहने खाने की सुविधा और करियर ग्रोथ का लालच देकर फंसाया जाता है। लेकिन जैसे ही वे दूसरे देश पहुंचते हैं, उनके पासपोर्ट और फ़ोन छीन लिए जाते हैं और उन्हें बंद साइबर स्कैम कंपाउंड्स में कैद कर दिया जाता है। वहाँ उनसे ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, क्रिप्टो फ्रॉड और फिशिंग जैसे ऑनलाइन घोटाले करवाए जाते हैं। मना करने पर उन्हें हिंसा, धमकियों, भूखा रखने या प्रताड़ित करने जैसी यातनाएं दी जाती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया अक्सर उन्हें साइबर अपराधी समझती है, जबकि वह खुद मानव तस्करी और जबरन अपराध करवाने के शिकार होते हैं।
1: दिस साउंड सीरियस है मांगी। इसका मतलब यह है कि हम जैसे यूथ को एक चीज तो सीखनी ही होगी कि कोई भी जॉब ऑफर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो वी शुड पॉज एंड थिंक, राइट?
0: एब्सोल्युटली।
1: कंपनी का वेरिफिकेशन करो, एजेंट का बैकग्राउंड चेक करो, एम्बेसी एडवाइजरीज पढ़ो और किसी भी ऐसी जॉब के लिए जो बिना इंटरव्यू के, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के मिल रही हो, उसे दो बार नहीं 10 बार

0: तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे साइबर स्लेवरी और साइबर सिक्योरिटी की, तो चलिए अब सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भूमिका व्यास जी को, जिनसे बात की है पीयूष द्विवेदी ने।
1: भूमिका व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू
1: मैम, अक्सर हम दोस्त आपस में बैठकर किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं और थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसका ऐड आने लगता है, तो क्या ये सच है कि फोन हमारा हमारी बात सुनता है?
2: देखिए, इसके पीछे का आपको थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा। बीसीजी की सबसे पहले रिपोर्ट को देखेंगे,

पैसा निकलवा सके। इस तरीके का अगर कभी भी कॉल आए या कभी भी आपके पास मैसेज आए, पहले आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा मुझे फोन करना है, पहले मुझसे कंफर्म करना है। कोई भी आपको खाता दिया जाए और आपकी वॉइस दी जाए कि मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे अभी के अभी प्लीज 10,000 रुपए भेजो, वो वॉइस आपको आपके बेटे की लगेगी, लेकिन आपने उसको अपने बेटे को कॉल करके वेरीफाई करना है। अब मान के चलते हैं आपने वो लिंक क्लिक किया और आपका पैसा चला गया। एक आपको एजेंसी के बारे में बताती हूँ, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उनका खुद का कहना है कि जितनी भी उनकी कंप्लेंट्स आती है, मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती है जब फ्रॉड हो जाता है उनके साथ उसके 5-6 घंटे बाद। देख के चलिएगा, सिर्फ वही पैसा रिकवर हो पाता है जो 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर उनके पास कॉल आया हो। कॉल का नंबर मैं सभी आपके ऑडियंस को भी बता देना चाहती हूँ, इट्स 1930। आप याद करके चलिए, फ्रॉड हुआ नहीं, नेक्स्ट मिनट में आपने कॉल करना है 1930 पर। अगर आपने 2-3 घंटे बाद कॉल किया, हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं, वो समझ गए हैं कि ठीक है हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, वो सारा पैसा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में डाल देते हैं। सेकेंडली, अगर आपको कोई ईमेल आता है, कोई फिशिंग का ईमेल है, कोई आपको ये ईमेल कर देता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, इस तरीके के कोई भी मैसेज पे क्लिक ना करें। और अगर इस तरीके के ईमेल आते भी हैं और आपको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन चक्षु

समय हो गया है अब हमारे वीकली सेगमेंट का। दोस्तों, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन ने फिर एक बार खेल जगत में भारत का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और सब

ईमेल आईडी है yuvanifeedback@gmail.com पर, yuvanifeedback@gmail.com पर। विदा की घड़ी है पर रिश्ता नहीं टूटेगा। फिर मिलेंगे ये सिलसिला यू

बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में

0: फिर कोई भी हमारे फंक्शन होते हैं उनके मुताबिक हम संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम में गीतों को शामिल करते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और निरंकार भाई, देखिए हमारे इस लोक रंजनी कार्यक्रम से कहीं ना कहीं मिट्टी की महक या मिट्टी की खुशबू तो आती ही है।
0: बिल्कुल, और जब हम सावन की मल्हार सुनते हैं तो लगता है संगीत के अंदर ही बारिश हो रही है।
1: बिल्कुल, तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं पूजा शर्मा से एक सावन गीत।

0: क्या बात है कि जो सावन में क्या मनस्थिति होती है उसका जिक्र इसमें किया पूजा शर्मा ने। और अब जो सुनवाएंगे
1: अगला जो लोकगीत है वो सुनवाएंगे करमपाल और मंजू शर्मा की आवाज में, एक प्यारा सा लोकगीत।

मजबूती दी। एक और पैरा एथलीट दिलीप महाणुगावित ने स्वर्ण पदक जीतकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी ओर लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक अपने नाम किया। मुक्केबाजी में भी भारतीय मुक्केबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक लगभग पक्के कर लिए हैं। बात करें पैरा एथलेटिक्स की, तो भारत के दिलीप महाणुगावित ने पुरुषों की पैरा स्पर्धा मेंस 100 मीटर T47 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10.71 सेकंड की टाइमिंग्स के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने ना केवल पहला स्थान हासिल किया बल्कि नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। दिलीप की इस उपलब्धि ने भारत के खाते में एक और स्वर्ण पदक जोड़ दिया और भारतीय दल का मनोबल भी ऊंचा कर दिया। इसी स्पर्धा में रजत पदक भी भारत के ही मोहम्मद बेसिल ने 10.83 सेकंड की शानदार टाइमिंग्स के साथ जीता। बात करें दिलीप गावित की, तो

पुरुष वर्ग की बात करें तो जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम भार वर्ग में, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम भार वर्ग में, अंकुश पंगाल 80 किलोग्राम भार वर्ग में और नरेंद्र बेरवाल 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। जी हाँ, नरेंद्र बेरवाल 90 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। और हिम्मत, ये तो बात हुई सातवें दिन की, और बात करें आठवें दिन की, यानी आज बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पे भारतीय खिलाड़ी मुकाबले में हैं। दिन की शुरुआत की बात करें तो एथलेटिक्स से हुई, जहां पे पुरुषों की डेक्थोलन 100 मीटर में तेजस्विन शंकर ने अपनी चुनौती पेश की और 870 अंकों के साथ सातवां स्थान हासिल किया। और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट में भी पार्टिसिपेट किया, जहां पे अगर कुल मिलाकर अंकों की बात करें तेजस्विन शंकर की, तो इस समय चौथी रैंक उनकी बनी हुई है 2553 पॉइंट्स के साथ, वो चौथे स्थान पर हैं। जहां पे 870 अंक उन्होंने 100 मीटर में हासिल किए, वहीं 1885 अंक उन्होंने लॉन्ग जंप में हासिल किए, जहां पे उनका तीसरा स्थान था। और शॉर्ट पुट की बात करें तो वहां पे तेजस्विन शंकर को 2553 अंकों के साथ

बार फिर एक्शन में दिखाई देंगे। पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में अमलान बोरगोहेन भारतीय उम्मीदों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बात करें तो 31 जुलाई की तड़के यानी कल सुबह महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल में निधि रानी और सीमा पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। इसके बाद महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगी। कुल मिलाकर आज के दिन की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन भारत के लिए बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाला है। नीरज चोपड़ा, तजिंद

0: अपने श्रोताओं को ये बातचीत।
1: मेरे साथ हैं मनप्रीत सिंह। आपको बता दें, वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 15 दिन का समय बाकी रह गया है। भारतीय टीम 51 साल का सूखा खत्म करने के लिए उतरेगी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बार ओलंपिक खेला है, 2 बार पदक जीता है, सबको पता है 2020-2024। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में 3 एडिशन खेले हैं, जिसमें से उन्होंने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, यानी तीनों एडिशन में उन्होंने पदक जीते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड कप की बात करें तो 4 एडिशन पहले ही वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। एशियन गेम्स के 3 एडिशन खेले, जहां पर बात करें तो चाइना में गोल्ड जीता था, जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल था, इसके अलावा कोरिया में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा तमाम तरह के बड़े टूर्नामेंट खेले, 417 मुकाबले खेल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी दुनिया के जो सबसे ज्यादा हॉकी के मुकाबले खेलने वाले उनमें गिनती होती है। मनप्रीत जी, मनप्रीत जी, आपका आकाशवाणी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: बताइए, जो आपकी जर्नी, थोड़ा सा इसी पे एक सवाल करूंगा, जो शुरुआत की थी यहाँ तक पहुंचे मनप्रीत भाई, उसके बारे में बताइए स्टेप बाय स्टेप, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका चरण रहा उसके बारे में।
2: सर, मेरी जो स्टोरी रही है, सर मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ, ठीक है। मेरे घर में 2 बड़े भाई हैं, पहले वो हॉकी खेलते थे, बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो हॉकी कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उसके बाद मैंने हॉकी खेलना शुरू किया था। तो मैं 2011 में

0: बेस्ट दे के निकले और जीत के निकले बाहर।
1: 15 अगस्त को जब भारत अपने आजादी का दिन मनाएगा उसी दिन वेल्स के खिलाफ उतरना होगा, एक अच्छी शुरुआत करनी होगी। कुछ रणनीति बना रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, कैसा होगा मुकाबला?
0: काफी अच्छे मैचेस रहेंगे उनके साथ, क्योंकि मैं जैसे अभी आपको पहले भी बोला कि वर्ल्ड कप होता है और आप कभी भी किसी भी टीम को अंडरएस्टिमेट नहीं करने चाहिए, और वेल्स काफी अच्छी टीम है, तो यही रहेगा कि हाँ कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं, जैसे हम लोग काफी अच्छे प्लेंटी कॉर्नर में अच्छे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। उस दिन जितने भी हमें चांस मिले हम लोग उसको गोल में कन्वर्ट करें, और काफी बड़ा दिन है हमारे लिए उस दिन, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा मैच है उनके साथ, तो यही रहेगा कि हाँ कि हम लोग अपने देशवासियों को वो जीत के साथ दें।
1: भारत बनाम पाकिस्तान 19 अगस्त हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, हालांकि दो लगातार पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया भी अभी हाल ही में, क्या यहाँ पर कुछ दबाव होगा या वही जो

0: समावेश, दोनों सवाल एफआईएच में क्यों बेहतर नहीं कर पाए और एशियन गेम्स आने वाला होप्स को लेकर?
1: इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा था हमारे, तो पहले जो चार मैचेस जो राउरकेला में हुए थे वही थोड़ी से हम लोग ने अगर देखा जाए तो थोड़े ज्यादा गोल से हम लोग हारे थे, बट उसके बाद जो टीम का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद हम लोगों ने चार मैचेस हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया हॉबर्ट में खेले, वो काफी अच्छे रहे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ड्रॉ हुए, अच्छे मैचेस हुए स्पेन के साथ, और जो हम लोग बाद में यूरोप में गए तो वहां पे काफी अच्छे मैचेस रहे हमारे, हम लोगों ने नेदरलैंड को भी बीट किया, जर्मनी को भी बीट किया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस टीम की अच्छी, काफी इम्प्रूव किया है हमारी टीम ने, तो वो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जहां से हम लोग जो गलतियां होती हैं ऐसे टूर्नामेंट जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं उससे पहले आप काफी चीजें ट्राई करते हो कि आपका नया स्क्वाड होता है, नए प्लेयर आते हैं बीच में, आप ट्राई करते हैं कोई नई चीजें ट्राई करती है जो आप वर्ल्ड कप में उसको अच्छे से कर पाए, तो वो हम लोगों ने चीजें ट्राई की थी वहां पे, तो काफी अच्छी भी गई है, तो और जो अच्छी गई है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो एरिया थे जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है वो हम लोगों ने अभी ट्रेनिंग कैंप में उसके ऊपर काम किया है कि वर्ल्ड कप में जाके वो गलतियां दोबारा ना हो, हम लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें। और उसके बाद जैसे आपने एशियन गेम्स का बोला, एशियन गेम्स सभी को पता है हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां से हम लोग गोल्ड मेडल जीते तो हम लोग डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक के लिए, तो वर्ल्ड कप हमारे लिए आई थिंक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा एशियन गेम्स से भी पहले, क्योंकि वहां पे हम लोग ऑलरेडी काफी अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे जो यूरोप में काफी अच्छे हैं, जैसे इंग्लैंड है या और पाकिस्तान के साथ भी पहले खेलने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद एशियन गेम्स भी मिलेगा, तो काफी अच्छा एक वो चीज हमारे लिए रहेगी कि हाँ कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो वहाँ पे बिल्ड होगा उसको हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे एशियन गेम्स में भी।
0: जी बिल्कुल, उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एक और पदक भारत की झोली में एशियन गेम्स में आएगा, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड कप का एक इतिहास दोहराने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे मनप्रीत जी आपका जो अनुभव है 417 मैचों का वो यहाँ काम आएगा, आपने आकाशवाणी दिल्ली को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनप्रीत
2: जी। अतुल, तो ये हुई बात हॉकी की, और आकाशवाणी की ओर से हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सुनते हैं डीपीएल पर जो कि कल से शुरू हो रहा है आपकी।

0: इससे पहले वर्ल्ड कप का एक इतिहास दोहराने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे मनप्रीत जी आपका जो अनुभव है 417 मैचों का वो यहाँ काम आएगा। आपने आकाशवाणी दिल्ली को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू मनप्रीत
2: जी। अतुल, तो ये हुई बात हॉकी की, और आकाशवाणी की ओर से हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सुनते हैं डीपीएल पर, जो कि कल से शुरू हो रहा है, आपकी एक रिपोर्ट।
3: बात करें दिल्ली प्रीमियर लीग 2000 के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान आयुष बदोनी का कहना है कि इस बार सभी टीमें काफी मजबूत नजर आ रही हैं। उनकी टीम ने अच्छी तैयारी की है और लक्ष्य पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छे प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करना है। पिछले सीजन की चैंपियन वेस्ट दिल्ली लॉयंस के उप कप्तान आयुष दोसेजा ने कहा कि खिताब जीतने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन होगी क्योंकि सभी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड को मजबूत किया है। उनका लक्ष्य लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी बादशाहत बरकरार रखना है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा ने विश्वास जताया कि उनकी टीम के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और अपने समर्थकों को गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धूल ने कहा है कि दिल्ली प्रीमियर लीग युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच है। उनकी टीम निडर क्रिकेट खेलने के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखने पर ध्यान देगी। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के कप्तान मयंक रावत ने कहा कि टीम का हर खिलाड़ी उत्साहित है और दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन का मानना है कि हर सीजन के साथ इस लीग का स्तर और बेहतर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अनुशासित और आक्रामक क्रिकेट खेलने पर ध्यान देगी। वहीं न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने कहा कि DPL अब देश की प्रमुख घरेलू T20 लीगों में अपनी पहचान बना चुका है। सभी टीमें संतुलित हैं और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सभी कप्तानों के आत्मविश्वास और उत्साह ने साफ कर दिया है कि दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन रोमांच, प्रतिस्पर्धा और युवा प्रतिभाओं से भरपूर होने वाला है। सभी की निगाहें 31 जुलाई पर हैं, जब अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुराने दिल्ली 6 के बीच मुकाबले के साथ इस बहुप्रतीक्षित क्रिकेट महाकुंभ का आगाज होगा। अगले एक महीने तक दिल्ली के क्रिकेट प्रेमियों को हाई क्वालिटी T20 क्रिकेट का भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत रोमांस देखने को मिलेगा। DPL 2026 का थर्ड एडिशन अगर कहें तो कल से शुरू होने वाला है। और ये तो बात हुई क्रिकेट की। क्रिकेट से खबर और है कि भारतीय खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और फिलहाल अगर बात करें कॉमनवेल्थ अपडेट्स की, तो मेंस 400 मीटर सेमीफाइनल से अपडेट ये है कि भारतीय धावक विशाल टी अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और कार्यक्रम में वापस आए और अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग

महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल और ब्रॉन्ज मेडल में मैचों में जगह पक्की कर ली है। भारत की निकिता सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में यूक्रेन की मारिया पोरोटोरोक को 6-2 से हराकर फाइनल मैच में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की एपेनेसा एलिसन से होगा। हालांकि कामिनी वाविल को सेमीफाइनल में जापान की साइका उचिदा से हार का सामना करना पड़ा। अब वह रूस की इरीना तस्से दीवा के खिलाफ कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी। वहीं से 73

कॉमनवेल्थ गेम्स की, और स्क्वैश की बात करें जहां पे वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कनाडा में चल रही है, तो वहां से भी रिपोर्ट सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप की बात करें तो कनाडा के ओंटारियो में चल रही वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारत के लिए कल का दिन मिला जुला रहा। भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीय इंग्लैंड को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उसका मुकाबला यूएसए से होगा। वहीं भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में यूएसए से 1-2

पड़ी। हाल ही में वर्ल्ड जूनियर महिला चैंपियन बनी अनाहत सिंह ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने यूएसए की दिया यादव को 11-7, 11-5 और 11-4 से हराया। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने वापसी की। भारत की रुद्रा सिंह को चार्लेट स्लेज के हाथों 6-11, 4-11 और 8-11 से हार मिली। वहीं अनिका दुबे को लिली बोरेल ने 13-11, 11-8 और 11-6 से हराया। इन दो हार के साथ ही भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। और चलते चलते कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस की बात कर लें, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, और वहां पे भारतीय महिला टीम से एक अच्छी खबर मिली है कि मलेशिया को 3-0 से हराकर भारतीय टीम चैंपियन हो गई है। तो ये तो हुई बात कॉमनवेल्थ गेम्स की, और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हुई और हिम्मत कॉमनवेल्थ

0: सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
1: I'll be taking note of it।
2: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर

पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रश्नपत्र कदाचार निरोधाय संशोधन विधेयक राज्यसभायां विचाराधीनः। दिल्ली छात्र प्रदर्शने द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षितं रक्षयितुं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशः। महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अति वृष्टिपरा रक्त संचेतना उद्घोषिता ऋतु विज्ञान विभागेन। अपि च ग्लास्गो राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य कुंत प्रक्षेपकाः नीरज चोपड़ा रोहित यादवः यशवीर सिंहश्च अंतिम चरणे प्रविष्टवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकः 26-2000 पारितः। गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्द रायेण संशोधनार्थम् अयं विधेयकः उपस्थापितः। राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानं विधेयकस्यास्य मुख्योद्देश्यं वर्तते। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुम् अर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च

0: पूर्वभारते अपि आगामिषु द्वित्रिदिनेषु तीव्रप्रभञ्जनसहित विद्युत्पातेन सह प्रबलवृष्टिः सेत्स्यति इति विभागेन अनुमानितम्। अत्रान्तरे राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यामपि आगामिषु द्वित्रिदिनेषु मेघवर्षणस्य संभावना वर्तते। रक्षामंत्री राजनाथसिंहः अद्य नवदिल्ल्यां IASV त्रिवेणी इत्याख्यस्य सर्वमहिला नौकायान अभियान दलस्य सदस्याभिः सह संवादम् अकरोत्। तासां चाद्भुताम् उपलब्धिम् अदम्य संकल्पं च भूरिशः प्रशंसन्स। अवसरेऽस्मिन् रक्षामंत्री अवदत् यत् तासां साफल्यपूर्णं सागरतरण अभियानं राष्ट्राय गौरवस्य विषयः वर्तते। श्रीसिंहः प्रोदीरितवान् यत् दलस्य एषा अलौकिकी उपलब्धिः वर्तते।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: पाकिस्तानाधिकृते जम्मू कश्मीरे सोमवासरे पाक सुरक्षा बलैः शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारिणां विरुद्ध्य नृशंस कार्याचरणं पश्चात् अद्य 40 जनानां निधनानन्तरम् अपि उग्र विरोध प्रदर्शनं निरन्तरं प्रवर्तते। JAAC इत्याख्याया संस्थया सम्बद्धाः सामाजिक माध्यम संकेताः आक्षेपम्

0: लिए जीवन परीक्षा भी लेता है। तो ऐसे में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, काम भी कर सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं, अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी भविष्य संवार सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और इस बात के लिए तो भाई कहा जाएगा कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना और पढ़ाना चाहिए।
1: और आज सावन भी शुरू हो गया है पायल बहन।
0: बिल्कुल, तो और आज का हमारा जो है निरंकार भाई जो है फरमाइशी कार्यक्रम होता है SMS पर आधारित।
1: हाँ,
0: तो फरमाइश भी हमें भाई सावन के कुछ गीत सुनने के लिए फरमाइशें हमारे पास आ चुकी हैं।
1: और सावन का गीत ही सबसे पहले फरमाइश पर हम सुनवाएंगे और फरमाइश पढ़ देते हैं। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग और इनका परिवार, ये हैं। गांव चोहलदा बागपत से संजय।

प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े

0: पंजाब से हमें ये SMS भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से SMS भेजा है रवि कुमार राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। रामगढ़ कैंट से भी हमें SMS मिला है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का, और ये SMS हमें भेजा है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं रजाक मोहम्मद, शमी बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य। जनकपुरी सहारनपुर से ये SMS भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो और परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव वाली मोहम्मद, जिला सिरसा हरियाणा से हमें SMS भेजा है सुभाष लोना और ओमवती का। ये SMS हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेहर वाला खुर्द सिरसा से SMS भेजा है बलवंत जाखड़ और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। हनुमानगढ़ टाउन से ये SMS हमें भेजा है सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: और गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। और ये जो रागनी है ये राजा उत्तानपाद के किस्से से है, जब रानी सुरुचि और सुनीति दो बहनें थी, सुनीति बड़ी रानी थी। उनके बाद जब सुरुचि से शादी हो गई तो जब वो घर पे शादी होके आती हैं तो कहती हैं कि सुनीति को घर से बाहर निकालो। तो आपस में जो समझाते हुए राजा उत्तानपाद सुरुचि को कहते हैं तो उन दोनों का क्या संवाद होता है, आइए सुनते हैं धर्म सिंह और सरोज कपूर की आवाज़ में।

अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। ये हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हिमारमन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। ये हैं कुगदा कुम्हारी छत्तीसगढ़ से बलराम भया, दामनी भया, डोमेश भया, रतन भया और चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा और दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। और ये हैं हितेंद्र दास असम से लिख रहे हैं और जलालपुर पूरा जिला सहारनपुर यूपी से स्वर्ण सिंह प्रजापति, शिवम प्रजापति आर्यन और इनका परिवार। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कांबोज, पिंकी वंश और भूवेश कांबोज। गांव कलाना तहसील

अंबाला जिला अंबाला हरियाणा से भेजने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। अनारकली बाजार जुगराव पंजाब से हमें SMS भेजा है सुनील पाठक और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हमें SMS भेजा है मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। जमानिया गाजीपुर से हमें SMS भेजा है सुरेश जायसवाल और मिला जायसवाल और परिवार के सभी सदस्यों ने। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें SMS

एकता कॉलोनी रोहतक, सीता से हमें SMS भेजा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। संबलपुर कांकेर से भी हमें SMS भेजा है फागुराम यादव, ज्योति यादव और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शर्मा ने भी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें SMS भेजा है चिट्टा मंडी रोड यमुनानगर से। और ये SMS हमारे पास आया है सालेहा भाटा महासमुंद।

0: छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भाई हैं जीतू ध्रुव केवल और इनके परिवार के सभी सदस्य। नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से SMS हमें भेजा है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ग्राम पाजौनिया जिला जालान उत्तर प्रदेश से भी हमें SMS भेजा है। सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने खैल बाजार पानीपत से ये SMS भेजा है। नरेश मल्होत्रा नीटू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: तो सुनते हैं श्री राम को।

0: सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का
2: साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो, अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजय

0: आराम से बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। फल लगे हुए भी ख़राब होते हैं और जब डूब जाती है तो बेल भी ख़राब होती है। हम जानते हैं कि दूसरे पौधों के मुकाबले में बेल बहुत ही नाजुक होती हैं,
1: बिल्कुल
0: इसीलिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान भाई इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी की निकासी का प्रबंध करें तो वो उनकी फसलें बची रहती हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी की समस्या ख़ास तौर पर बेल वाली सब्जियों में आती है, उसके नियंत्रण के लिए भी उन्हें कदम उठाने ज़रूरी हैं, चाहे उसमें छिड़काव करना है या फिर आप को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बेल वाली फसलें हैं उनके अंदर पानी की निकासी के साथ साथ पोषण की भी

0: कृषि से जुड़े हुए, तो
1: बिल्कुल
0: उनकी जानकारी भी हमारे किसानों को होनी चाहिए।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर

0: समय सुनते थे कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव होता है, ये होता है, वो होता है, तो आज हमारे भारत में जो सपना साकार हुआ है, इसका हमारे किसान भाई फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1: 2021 का जो समय आया
0: जी
1: सर, वहां से जितने भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं वो नैनो में लिक्विड के फॉर्म में क्रिएट होने लगे। तो जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड्स है, इसका सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो छिड़कने की है।
0: जी
1: क्योंकि एक एकड़ में जो कंपनी है वो कहती है 150 से 200 लीटर पानी लगता है। अब 150 से 200 लीटर पानी छिड़कने के लिए 15 से जो 20 लीटर की टंकी है वो करीब 10 से 12 टंकी के साथ में काम होता है। और आप देखते हैं कि सर, जो किसान हाथ से छिड़क रहा है उसका 4-5 साल में राइट का हिस्सा पैरालिटिक हो जाता है, क्योंकि उसका वो अंग काम नहीं कर लेता है।
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात है, जब वो छिड़कता है तो दवाइयां सूंघता है, सूंघने से बीमार होता है। और भारत में 58,000 किसान सांप के काटने से मरते हैं और 4 लाख लोग दवाई सूंघने से बीमार होते हैं। वहां पर ड्रोन का क्षेत्र आया और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, मोदी साहब ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कैसे लाएं जिससे कि इनपुट कॉस्ट घटे और आउटपुट बढ़े। वहां से ड्रोन का शुरुआत हुआ और हमने पहली बार 27 अगस्त 2021 में इफको फर्टिलाइजर्स के साथ मिलकर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सवाई माधोपुर के अंदर, पहली बार ड्रोन से डेमो करा, जो कि बहुत अच्छा गया। उसके बाद में हमारे जो फर्टिलाइजर मंत्री थे उस समय, मनसुख भाई मांडविया जी, उन्होंने 1 अक्टूबर 2021 में अगेन इफको के साथ मिलकर हमने पालीताना भावनगर

0: उसको ड्रोन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं कि छिड़का जाए। तो इस साल हमने मलयाबाद में किया, हमने सहारनपुर में किया, मुजफ्फरनगर में किया, इधर हापुड़ में किया, उधर हैदराबाद में किया। फिर भारत में जो सबसे लंबा पेड़ होता है कर्नाटक में, सुपारी का होता है
1: जी,
0: अराकनट बोलते जिसे बोलते हैं वहां पर, वहां की भाषा में, जो कि 60-65 फुट का पेड़ होता है, उसके ऊपर भी किया। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप खड़े हैं वहां से 1.5 किलोमीटर दूर तक आप छिड़क सकते हैं, और ऊपर में करीब 65 मीटर यानी 200 फुट

0: दवाई आपके ही खेत में छिड़की जाएगी, चाहे वो एक बीघे का हो चाहे 10 एकड़ का हो।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के मन में ये भी जिज्ञासा हो रही है कि भाई जब हम दवा का इस्तेमाल करेंगे खेत पर जाकर, तो क्या हाथों से ही दवा उतना ही डालना पड़ेगा जितनी जरूरत है, या इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है?
0: इसका जो टैंक होता है वो 10 से 12 लीटर का होता है
1: जी।
0: तो 10 लीटर का टैंक हुआ तो उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और जितनी दवाई है वो उसमें डाल देते हैं। तो आप अच्छे उपयोग के लिए क्या करना चाहिए कि बाहर बाल्टी में एक 10 लीटर पानी लेना चाहिए, दवाई डाल देनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से घोलकर उसका जो टैंक है उसमें डाल दीजिए,
1: जी
0: फिर वो ऑटोमेटिक उड़ के ऑटोमेटिक तरीके से छिड़काव करके आ जाएगा।
1: मतलब जितने इसको दवा डालनी है वो 10-12 लीटर का जो टैंक है
0: हाँ,
1: उसके हिसाब से वो 1 एकड़ के लिए है।
0: 10 लीटर पानी से ज्यादा आपको नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब 20 लीटर का दो, 50 लीटर का दो, आपको कोई जरूरत नहीं। खेत के लिए आपको 10 लीटर का टैंक चाहिए जिसके अंदर पानी डले। 1 एकड़ के लिए 10 लीटर ही पानी चाहिए, न 11 चाहिए न 9 चाहिए। और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है, उसके हिसाब से दवाई अच्छे से मिलाकर घोलकर आप उसके टैंक में डाल दीजिए। कई खेतों में ऐसा भी होता है कि एक के साथ दो तरह की दवाई मिलाई जाती है, तो जो भी दवाई आपको मिश्रण करना है आप बाहर करिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, टैंक में डालिए और टैंक उसको अपने आप छिड़काव करेगा।
1: आखिर में डॉक्टर गोविंदा जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बढ़ाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
0: जब भी नई तकनीक आती है दुनिया के किसी मुल्क

0: और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील करने की अफवाहों को खारिज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान का शुभारंभ करेंगी। दिल्ली नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तेहखंड तथा ओखला में प्रतिदिन 800 टन क्षमता के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। दिल्ली के गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यदि इन मामलों में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उनकी शीघ्र समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस विषय को भविष्य में

0: रहा है। पंजाब के छात्रों को न्याय तब मिलेगा जब पंजाब में जिस फार्मास्यूटिकल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है वो दोबारा होनी चाहिए।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोहरे मापदंड अपना रही है।
2: पंजाब में भी जब पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा पंजाब में, तो वहां पर आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुई है? ये जो उन्होंने दोहरे मापदंड रखे हुए हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये नहीं चलेंगे।
1: भाजपा का आरोप है कि पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। दिल्ली सरकार राजधानी में भूमि और संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति के लिए विशिष्ट प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की उन 9 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने समुद्र प्रदक्षिणा नाम के पहले ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री सिंह ने 4 महासागरों में लगभग 25,500 नॉटिकल मील की दूरी तय करने के लिए टीम को बधाई दी। उन्होंने इस अभियान को नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के आपसी सहयोग का शानदार उदाहरण बताया।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की

प्रारंभ होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज राजा गार्डन स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 1000 से अधिक लंबित मामले पाए गए। उन्होंने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रोहिणी जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा मोटर वाहनों के शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म हटाने की कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ

तस्करी मामले में एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 34 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही 400 क्वार्टर शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

योगेश सिंह ने स्पष्ट किया कि अनुबंध पर कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों को हटाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। महापौर प्रवेश वाही ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाधित की। श्रावण का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कल से 30 अगस्त तक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीम खेलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज हम प्रयोग कर लाए हैं आप सभी के लिए खूबसूरत से गीतों की लड़ी। और आइए शुरुआत करते हैं किशोरदा और लता जी की इस प्यारी सी आवाज के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आपने सुने चंदी खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान कर

0: में रखा है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
2: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा।

लिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान

0: का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना

0: 1928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर

जित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। आईएन स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित

0: के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस लेजिस्लेशन ग्रांटिंग वंदे मातरम द सेम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एज द नेशनल एंथम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर

अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। दौलत मुश्तरका खेलों में जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी ताज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इस बिल को मंजूरी दी।

में सिर्फ ऊपरी तब्दीलियां कर दी हैं और मुजव्वजा तरमीमात पब्लिक इम्तहानात में धांधलियों को ख़त्म करने के लिए मौसर साबित नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुजव्वजा बिल की हिमायत करती है, ताहम इसमें शफाफ और पेपर लीक से पाक इम्तहानात को यकीनी बनाने के लिए सख्त शिकों की कमी पाई जाती है। पार्लियामेंट ने पेपर लीक मुखालिफ बिल को मंजूर किया, जिसमें सख्त तरीन सजाएँ और फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने की गुंजाइश

कमीशन के मुताबिक बांकीपुर हलके में आखिरी खबरें मौसूल होने तक 34% से ज़्यादा वोटिंग हुई। मंजालपुर हलके में 37% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि दतिया हलके में 71% से ज़्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने आज एक दूसरे पर ताज़ा मिज़ाइल के हमले किए, जिसके बाइस बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग के अंदेशे उभर कर आए हैं। नीज किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताज़ा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि ये जंग मजीद मुल्कों में

की है। उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी है क्योंकि सैलाब के पानी के बाईस महानदी दरियाई निज़ाम में तुगयानी आ रही है। इसी के साथ इम्कान है कि बहुत बड़ी मकदार में सैलाब का पानी आज शाम तक मुंडाली पहुँच जाएगा। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में नीरज चोपड़ा मर्दों के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह भी इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज पांचवें मकाम, रोहित यादव नवे और यशवीर सिंह दसवें मकाम पर रहे। इससे पहले भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों के पैरा एथलेटिक्स मुकाबलों में मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल मुकाबले में दिलीप महादो गविट ने सोने का और मोहम्मद बासिल मोरसिंग काथ ने चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की। गाविट ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10.71 सेकेंड का एक नया रिकॉर्ड कायम किया और सोने का तमगा जीता, जबकि बासिल भी इस सीज़न के बेहतरीन रिकॉर्ड 10.83 सेकेंड में अपना गेम पूरा करके दूसरे मकाम पर पहुँचे। इंग्लैंड के केविन ने 10.85 सेकेंड में अपना खेल मुकम्मल करके कांसे का

0: मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट में कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चलें तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है, जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है कि
1: जी
0: जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो फिर भी अभी हमें इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है, आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
1: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस है एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है। और डिस्प्ले की बात करते हैं हम, फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
0: देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है, अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं।
1: जी
0: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में

0: 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब ये 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है, मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में, हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में।
1: जी
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए

0: तारक नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पे 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं।
1: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218।
0: जी
1: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था, लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था, और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सैटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इम्प्लीमेंट करना है,
0: जी
1: तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालें।

0: बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं,
1: जी
0: हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर्स आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
2: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
1: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान Constantine Ravindran ji.
3: Thank you, sir. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation, any frequency prescribed for

0: संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी। थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द हॉनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डीसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वॉज सपोर्टेड बाय द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absentation risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
2: Honorable Minister.
0: Dr. Mansukh Mandviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है।

सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा, और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था, और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके, हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है,

0: दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी के अनुरूप

0: क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? ख क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और घ देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
2: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेज है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस

कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च और एक दूर सुदूर गाँव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग।

0: सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहाँ पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो

स्कीम में भी है जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5

मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए, इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे।

0: कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: मिनिस्टर,
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीज़ें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या, उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा

माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं। महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना एंड एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकार है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड

एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताए हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए कुछ मत है, 40% इसी में महिला है, अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे।

ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला

0: साल से मांग था लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया है सर। थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या? मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है। और उसमें एक कंसेप्ट है कि हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान।

0: जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: The House stands adjourned to meet at 2 p.m.
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।

लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी

0: विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी

तो उसकी हंसने के पीछे का दर्द उन लोगों को समझ आ जाता है जो ज़िंदगी में खुद इस एहसास से रूबरू हुए होते हैं या दो चार हुए होते हैं। तो आज हमने भी सोचा कि अदब, मोहब्बत और थोड़ा सा मलाल, इन तीनों को मिलाकर अगर हम कुछ बनाएं तो वो बन जाती है गज़लें। तो आज हम कुछ ऐसी ही खूबसूरत सी गज़लें आप सभी के बीच लेकर आए हैं। आपके साथ मैं रहूँगी आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना।

कि मैंने अभी ऐप ओपन की है तो मुझे जो है सुनाई पड़ रही है। तो मुझे कृपया बताएं कि आप इस समय हमारे साथ संपर्क साध पा रहे हैं या नहीं। फिलहाल बताएं, हमारे साथ बहुत सारे तमाम और बेशुमार संदेशे, कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा, हमारे साथ सोमदत्त जी जुड़े हैं, सुखविंदर सिंह जोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, नारायण खर्चे सुन रहे हैं, स्वीटी जोड़ा है, मोहम्मद कमर है, नारायण खर्चे हैं, और साथ है हमारे नबी हसन, अब्दुल गफ्फार और मल्होत्रा टीडी मोहाली से, हाजी मंजर साहब हैं, प्रकाश वर्मा हैं, अहमद भगवान, बिट्टू गंगेजा, सत्येंद्र हमें सुन रहे हैं इस समय, और आर कुमार हैं, किशन सपकाल, फगुराम यादव हैं, फारूक अली खान साहब हैं हमारे साथ, शंकरलाल जायसवाल, अहमद भाई फूलवाले, रमेश कुमार, राज क्रिएशन, मुकेश भट्टा, राजीव शर्मा, महेंद्र प्रसाद मोदी, सतीश अनेजा साहब भी इस समय हमारे साथ हैं। अनेजा साहब बताइएगा अब आवाज़ आ रही है या नहीं। पी एस नभानकर साहब हैं और साथ में है विजय चौहान, और दिग्दर्शन गौड़ हैं हमारे साथ, हिमशेखर साहू हैं, अक्रम हुसैन हैं, प्रवीण हैं, राजेश वर्मा हैं, कमल बलूजा और अन्य तमाम साथी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। और हमने आज बात की कि हम गज़ल की बात करेंगे, तो भाई गज़ल अगर हम ज़िंदगी के साथ जोड़ कर देखें तो ज़िंदगी अगर एक किताब है ना, तो गज़ल उसके खूबसूरत पन्नों के मानिंद होती है।

मित्रों, इसी बीच बसंत कुमार सिन्हा और रवि कुमार जी ने भी हमें ज्वाइन किया। तो गज़लों की हम बात कर रहे थे, तो गज़लों की खासियत ही ये होती है कि वक्त के साथ कभी भी गज़लें पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार जब भी आप उन्हें सुनते हैं ना, तो एक नया ही एहसास दे जाती हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं आज की महफिल में जो चंद खूबसूरत सी गज़लें हम लेकर आए होंगे, उन्होंने भी आपकी कुछ जो यादें थी उन्हें एक बार फिर से जिंदा कर दिया होगा। चलिए चलते चलते लता जी की आवाज़ में एक और खूबसूरत सी गज़ल के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होगी। प्रातः 4:50 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे, परंतु AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा

प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ

0: नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों

आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कुछ यादें रात के साथ यूं चली जाती हैं जैसे कि वो कहीं ना कहीं दिल में बसी थी, जैसे

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और

रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में

साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।

तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा न मान मेरा। कुछ रोशनी शहर को मिली, तू जान है मेरी जहान मेरा। तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा ना मान मेरा।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफ़र यहीं तक। रात सुरमई में 2:10 पर होगी हमारी आपकी फिर से मुलाकात, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है।

करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए

स्थिति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर

ईश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता है। महिला वर्ग के 57 किलोग्राम फाइनल में उन्होंने अमरीका की एपेनेसा एलिसन से 6-0 से हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग के 49 किलोग्राम में कामना बाबल ने कांस्य पदक मुकाबले में रूस की इरिना तिसदेवा को 2-3 से हराया। वहीं 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने स्पेन की पाउला वेनाइक्सा पेरेस को तकनीकी श्रेष्ठ

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए रात सुरमई का आगाज़ करते हैं इस गीत के साथ।

इससे पहले कि बेवफा हो जाए, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी फराज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक

लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद

0: सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।

0: प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है। लवप्रीत मात्र 1 किलोग्राम के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। उन्होंने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का वजन उठाया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet.

दोस्ती में जब प्यार की मिठास घुल जाए तो हर मुलाकात यादगार बन जाती है। अपनेपन की यही खुशबू दिलों को हमेशा करीब रखती है।

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार

0: देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत

0: हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय

विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों को मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित

प्रोग्राम है अरुणिमा, और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सूरत और सीरत से लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार शैलेंद्र।

चलिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनाड़ी से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। संगीतकार आनंद मिलन, गीतकार समीर। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

8:45 पर कार्यक्रम स्वर गंगा में शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं राग मियां की तोड़ी। आवाज रहेगी श्री MD साकिब जी की। उसके बाद 9:15 की प्रस्तुति होगी गांधी चर्चा, जिसमें वार्ताकार होंगे श्री रमेश कुमार सिंह जी। 9:30 पर कार्यक्रम मिट्टी दी महक में आप पंजाबी कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। फिर 10:10 की प्रस्तुति रहेगी फिल्म संगीत आपकी पसंद। फिर 11:10 में कार्यक्रम सबरंग और 11:30 पर हम लाएंगे आपके लिए कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत के सितार का आनंद ले सकते हैं, जिसमें कलाकार होंगे पंडित राजीव वर्मा जी।

सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना

प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा।

संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिखतु दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक

द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारियों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्रित महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूट स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं।

ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है।